चांद सितारे मस्त नजारे सब है उन्हीं के साथ मोहब्बत तुम्हें जिनके हाथ जवानी पाँव पड़े दिन रात सुने फिर हाय।

0: दिल लगाकर आ गया उनको भी तना बैठना।
1: जी
0: तुम्हें भी किसी का इंतजार था?
1: जी
0: नो मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था, मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा था, सुनो तो। सुनना न था तो सामने आए क्यों थे?
2: क्या हाल है तुम्हारा? ठीक मुझे। इस नमक हराम को अपने किए की सजा मिल गई महाराज।
3: अजीत, एक दिन हमने तुम्हारे बाप की बहादुरी को सलाम किया था, आज तुम्हारी बहादुरी को भी सलाम करते हैं।
2: महाराज, बच्चों की बहादुरी से बुजुर्गों का सर ऊंचा होता है, झुकता नहीं।
3: हम कभी नहीं झुकते अजीत, तुम्हारे बलिदान ने आज हमें झुका दिया, तुमने अपना सब कुछ हमारे वास्ते लुटा दिया, आज हम अपना सब कुछ तुम्हारे वास्ते लुटाने को तैयार।
2: तो फिर अजीत की शादी का जल्दी इंतजाम कीजिए महाराज। मैंने कहा था ना, गोरी को इस महल से बहन की तरह विदा करूंगा।
4: विजय,
2: आज वो समय आ गया है।

0: चली गई।
1: यही तो ताज्जुब की बात है माँ, गए थे दूसरे की शादी करवाने और खुद अपनी हो गई। गौरी
0: गौरी
1: गौरी